महाराज कह रहे ने सुनाउण वाले ज्यादा ने, सुनन वाले घट ने। इन्नी बख्शिश है कहंदे ने ध्यान ला के कोई बाणी सुने, हर वेले बाणी सुने। इलाही बाणी कह की रही है कहंदे ने अंधे नू भी रस्ता मिल जाता है। सुने अंधे पावे राह, अखां नाल पावे ना दिसदा होवे, बाणी दी रोशनी विच ऐसी पावर है, बाणी दी रोशनी विच ऐसी ताकत है। फिर जदों बंदा सुनदा सुनदा सुनदा निरंकार दे चरणां नाल इन्ना जुड़ जांदा है, इन्ना जुड़ जांदा है, फिर कहंदे ने मन्ने की गत कही ना जाए। हुण कल्ली नमस्कार नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कीती, महाराज दी मन भी लई। महाराज नूं मत्था टेकण वाले बहुत ने, महाराज नूं मन्नण वाले भी बहुत ने, पर महाराज दी गल मन्नण वाले घट ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने फिर जिहड़े मन लैंदे ने ना, सुणियो जरा ध्यान नाल,

जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन।

उडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरेया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करेया सब ने धान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरेया जन नानक बल बल साध

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। साब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी।

मूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेवो, निरंकार का चीन तन है पेवो। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकरे कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अच्छा।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो काल को एक बार त्यय है ताकि काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला।

तो यों करके राजा जनक जी अवस्था एहो जी सी जिसकी बाबत यों भी फरमान आउंदा है जैसे जल में कमल निरालम मरगाई निशाने सुरत सौद भव सागर तरिय नानक नाम वखाणे। जिवें पानी दे विच कमल दा फुल हुंदा है उहदी डंडी विच तसीर हुंदी है, पानी जिवें वधदा है उस तरह उह वधदा है, पानी दे विच रहिंदा होया डुबदा नहीं। ऐसे तरह मरगाबी है, मरगाबी दे खंभां विच तसीर है, रहिंदी पानी विच है पर उहदे खंभां नूं पानी स्पर्श नहीं करदा, तसीर ऐसी है। इस तरह ही कहिंदे गुरमुख जिहड़े परमात्मा दे नाम दे विच लिव लग जांदी है उहनां दी सुरत उहदे विच सत्संग जी दुनियावी माया उहदे विच प्रवेश नहीं करदी, उह हमेशा परमात्मा दे रंगां विच रंगे हुंदे ने। उहनां नूं गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाग ठड़े हर संत मारे जिन कर धन हर नामा प्रवान गणी सही आए सफल तनाके काम। ओ धनी ने गुरु घर दे विच जिवें कोई साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दा दरबार लग्गिया, लोग बैठे कई गल्लां करन लगे, भाई तेरा की हाल है, दूसरा कहिंदा तेरा की हाल है, आपस विच गल्लां कर रहे ने। एक बैठा कह रहा है भी मैं एक जगह देखी उत्थे एक धुज लगी है झंडी भी बहुत, वह झंडी का मतलब सी भी उहदे कोई एक करोड़ कैश सी। दूसरा कहिंदा तां एक की देखी, मैं दूसरी जगह देखी उत्थे तीन धुजां लगियां सी, कहिंदे भी उहदा मतलब की, कहिंदे उहदे कोल तीन करोड़ कैश सी। दूजियां नूं दोनों नूं चुप करा के कहिंदा तुसीं ते की देखिया भी, मैं एक मकान ते देखिया सत धुजां लगियां होईयां। सत धुजां का मतलब भी उहदे कोल सत करोड़ कैश सी। सो ये जदों गल्लां उहनां दीआं चलदीआं ने, सतगुरु जी ने कीर्तन नूं कहा भाई रोको, ये क्यों गल्लां कर रहे हो? पुछिया भाई तुसीं की गल्लां करदे हो? ये सत्संग है, इहदे विच कोई इहो जिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां बाहरलियां। कहिंदे जी ये गल्लां कर रहे हैं भी एक बंदे इहने एक धुज इन्ने पैसे वाला बंदा देखिया, इहने इन्ना पैसा वाला बंदा देखिया, असीं आपस ये गल्लां करदे हां। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई तुहानूं इह नहीं पता गुरु नानक दे दर ते किहड़े धनी ने। उन्होंने उस वेले शब्द उचारण करके उन्होंने सिख्या देनी कीती।

चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनाता सबदवा जंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध चलत मोही। समय जोत जोत है सोए तिसद चानन, समय चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत स्पावै स्वार्थी होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग कहो, होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया मन साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस

0: केड़ा वाला
1: गुजराती गुजराती
0: छो
1: छे
0: छे अच्छा अजे नंबर्स दे विच केड़ा हुंदा पंज ते बाद छे छे हुंदा
1: ओथे एथे केड़े छो
0: छो सत सत सेम
1: सात
0: सात
1: हां
0: तो चेंज हो गया फिर
1: छो सात
0: जेडी प्रोनंसिएशन और चेंज हो गई छो छो तो ठीक है
1: एक दी
0: दी अच्छा
1: एक दी
0: तीन तीन
1: तीन
0: तीन
1: चार
0: चार
1: पांच
0: पांच
1: छो
0: छो
1: सात
0: सात
1: आठ
0: वो तो मिक्स हो गया फिर

मुगता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तिरु रहता धरम उन सदा तिहाय की उर पार ब्रह्म प्रभ की जब दरगह मान पावे नानक पद सिद्धि कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलाव दिसराम सनेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मनसु पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सर चित्र ढाके मर सरणी पर ठाकुर ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊंचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आप उखन पहरी जय मन ति सिमरत को आलस की जय जय प्रसाद हसव हस्त सवारी मन तिस को कभुन विसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सत सहत्याई तिसहत्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी ने की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह करण नाथ जे प्रसाद देख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुसह जे वसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद प्रमुख पाव है जे प्रसाद

जे प्रसाद तू प्रगट संसार जिस प्रभ को मूल न मनोह विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जा जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गुआए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विकास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लाओ तित लगाए हर नाथ नानक किन कहे कछु न हाथ सरोग

साध के संग उजर होत, साध संग मन सगलीक होत, साध के संग मिटाय अभिमान, साध संग प्रगटाय सो ज्ञान, साध के संग बुझ प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्ण कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रमाय समानी, साध के संग गोचर मिल, साध के संग सदा पर फूल, साध के संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा, साध संग हुए सब कीरेन, साध के

साध के संग न कब हुतावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध सुन बस अगोचर लय है, साधु के संग अजर सह है, साध के संग सह थान ऊंचाए, साधु के संग महल पहुंचाए, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग के उर पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारय, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारय, साधु के संग शोधन पावय, दे दंते सब को वरसावय, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानु साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं किच कहार, दर्शन भेटत होत निहार, साध के संग कलुखत हर है, साध के संग नरक पर हर है, साध के संग यहाँ वहाँ सोहेला, साध संग विचरत मेला, जो इच्छा सोई फर पावै, साध के संग में वृथा जावै, पार ब्रह्म साध रिदवस है, नानक उदरै साध सुन रस है, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मनते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लग गया प्रमिठा, साधु के संग खट खट डिठा, साध संग बहि अज्ञाकारी, साध संगत

वेद न जान है, जेता सुने थे तब ख्यान है, साध की उपमा थे गुण थे दूर, साध की उपमा रे भरपूर, साध की शोभा का नही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंछते ऊंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक अस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अश्वदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो बसदा कौ खोदय कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाव नान जो पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी मुझसे ऊंचा मर अपने है सबसे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन फे नानक जिन प्रभु आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल के रे ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

संहिता ब्रह्मज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करह प्रभु आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदादेश ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाए अदाकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मिद कौन मकान है ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी कांत न पा नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सिख का करता ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुकद जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी स्वरूप और तार है जो अंतरनाम सर्व में पिक है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हुआ पारस सगल निस्तार है अश्वधी मिथ्या नाई रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिया रूप ने पिख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर है मन की बासना मन ते टरे इंद्रिय जीत पंच दोख ते रहत नानक कोट मधे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विषन की माया ते हुए पिन करम करत हुए ने करम तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं वाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मंतन अंतर सिमर गोपाल सब ओवर होत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावै नानको वैष्णो प्रमुख पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंते विंचय सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मन खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नितनीत मंतन अर्पय विशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म में सोते राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय वसावै सो पंडित फिर जोन ने आवै वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सुखम मै जाने स्थूल चौवर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम है जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध सुन पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर्धार है पश प्रेत मुगत पाथर को तार है सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत की तय न पाई धर्म नानक तिस मिले जी लिखिया तुर करम जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर है सगल संगातम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास रब की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुगल सोकावै तैसा हर तैसा उसोग सदानंद तैन है वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुकत
पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राख तै सात तिन नाओ आपे करन करावन जो प्रभावै सोई पुन होग पसरियो आप होय अनंत रंग लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे

स्वरूप पुस्तक करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृचि बहुविद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीरथवासी कई कोट बन पर मैं उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव काव विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट भय अवमानी कई कोट अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिक आत्म निकोर कई कोट पर दर्व को ही रहे कई कोट पर दुख ना करे है कई कोट माया आश्रम माहे कई कोट पर देश प्रमाहे जित जित लावो चित चित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट चित जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पात्र वृख निप जाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र सकल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राज तम साकत कई कोट भेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट केरतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट के जीवे कई कोट गिरी मेहर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किनर पिचास कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगा सब ते ने रह सब हूं ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरल सुरंग निवासी कई कोट जन मह जीव है मरह कई कोट बोझो नी फिर कई कोट बैठ ती खाए कई कोट काले सुख पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किच प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म रहन्ते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिलियो प्रभ अवनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जन को हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट काणी हर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पुत्रियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की ने वो भात प्रवत हुए प्रमाय समात ताकांत जाने कोये आपे आप नान प्रसोये कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे है अमर भय सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस उसे समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलो करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बल हारने जल तल मैयल सोए अश्वदी करण करावन करने जो जो तिस भावे सोई हो किन मैं था पुथा पनहारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्में दार अदर रहा वै हुक्में उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बड़ियाई नानक समय रहा समाय।

करै जगदीश, जो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बणत आप बनाय, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नहीं साथ, करन कराम सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोए भुंतियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै है, कबहू शोक हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊप आकाश प्यार, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावण हार, कबहू नृत करे भात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महा क्रोध विकराल, कबहू सबकी हो त्रवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू भिकारी नीच का साजा, कबू अब कीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, जो प्रभु राखे तिवीर है, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन सारी लावे ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबो सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबो कीट हस पतंग हुए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांग दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा और न कोए, कबो साध संगत पावे, उस स्थान ते बोर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं बिना, मन तन नाम रते इक रंग, सदा वसै पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गावन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान सरो।

दुष्टता का जंतु आपस को कर्म वंत का आवे जन्म मरे बोजोन परमावे धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी वसावे नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हुए कर घर भावे तृण समान कर संग न जावे बहु लश्कर मान को ऊपर करे आज पल भीतर ताका हुए बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए भसवंत भसवंत किसे न बदया फंकारी धर्म राय तिस्करे कुआरी गुरु प्रसाद जाखा मिटाय मां सो जन नानक दरगह प्रवान कौड कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर मेरे अवतार नानक जतन कर आत्म ने दरवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो भला कहा वह तसे भला ही निकट न आवे सब की रेर या कामन होए कहना ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ हो तब इस को सुख नाही कोए जब यह जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब यह जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजा प्रभु कृपाते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छुटे सहस खटे लख कोठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक बहु विख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुवर मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागे किसे प्राप्त होए करण कराव ने आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दिश करे तैसा होए आपे आप आप सोए जो किच किनो सो अपने रंग सब ते दू सबू कै संग बूझै देख करै बे आपे एक आपे अनेक मर न बिनसै आव न जाए नान सदी रह समाय आप उपदेसै समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका उकर हार उसते पिन कहो के छोय थान थन तरे कै सोए अपने चरित आप करने हार कोतक करे रंगी अपार मन में आप मन अपने माहे नान कीमत करने जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद के न बख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मदह कि न बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण

सब कुछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खेल आप करनेहा, दूसर कौन कहा विचार, जिसनों कृपा करे तिसापन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलो तजू सिया।

मानु कीट एक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, भोर न तिसना लागे आए। मार राख को आप, मानुक कह किच नाही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रखंड परोए।

सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पे ठाकुर का रंग साध संग विदसे सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर करम सर्वह कहता हर दरगे नानक उजल में था वड़पागी ते जंजक माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान ए तुतकी वो सो जी जाने नाम संग जिस कामन मानिया नानक तिनह निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुज है जिसकी जानो तृष्णा बुझ है साध संग हर जिस कहत सर्व रोगते वो अर्जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान गृहस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आशा तिसकी कटिया जम की भाषा पार ब्रह्म की जिस मन पू नानक तिसैन लागे दू जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डोलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस्त डरे जैसा सात सा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत से जिया गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किच मूल नान सो सुखम सोई अस्तूल न किस जन में न किच मरे आपन चलत आप ही करे।

अन्य जुगत रच थाप उथाप अब नासी नहीं कचखंड तारण तार रहो ब्रह्मंड अलख अभे फुरख प्रताप आज पायता नान जाप जिन प्रभुजाता सो सो भावंत सगल संसार उदर तिनमंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुर्विसारण

जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा रोग जो मंदिर को था मैं थमन तो गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखाण नाव चढ़तर है प्राणी गुरचरण लगत निस्तर है जो

जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाचो तूर, नानकी हर लोचापू, मन मूरख काहे मिलाई है, प्रभु लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभु देवनार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, उला काहे फिरे अजान, कौन बस आई तेरे संग, लपट रहो लस लोभी पतंग, राम नाम जब फिर दे माहे, नानक पद से तीघर जाए, जिस वखर को लैर तू आया, राम नाम संतन घर पाया।

त्याग क्या झंझा, तन तन कै सब कोए, मुको जर हर धर गए सोए, यो वापार विला वापार है, नानक तां कै सद बलहावे, चरण साध के तोहे तोहे पीवो, अरब साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा बड़ पागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनेक विघंत साधु राख है, हर गुण का अमृत रस चख है, ओट गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मेरे तक को जी वालन हार, ऊखे को देव त्याधार, सर्व निदान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सबके तिसका हो करण है जोग, जिसमें दोसर हुआ न होग, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब थे ऊंच निर्मल है करनी, घर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल दिया, जा कह मन गुर की प्रतीत, त्रिजन आवे हर रोचित, भगत भगत सुनिए ते लोए, जा कह हृदय एक होए, सच करनी सच ता की रहत, सच हृदय सत मुकहत, साची दृ साचाकार, सच व्रत साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता सलोक, रूप न रेख न रंग किच, त्रै गुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो परसन, अष्टपदी। अब नासी ब्रह्मन में राख, मानु की तू प्रीत त्याग, जिससे प्रय नहीं कछ कोए, सर्व निरंतर एक है सोए।

नाम जपत मनोहो वरसूख चिंता जाय मिटे अंकार तिजन को कोई ना पहुंचन हार सिर ऊपर ठांडा गुरपूरा नाम ताके कारी पूरा मत पूरी अमृत जाकी दिट दर्शन पेखत उदरत सिट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहत निहार ताके निकट ना आवत काल अमर भय अमरापद पाया साध संग नानक हर तियाया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अशपरी संत संग अंतर प्रभ जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकट कट माहे अनकना दिष्टाहे नौ नदी अमृत प्रभ का नाम देह में चा विश्राम तुलत मार अन तैनार कहन ना जाई अचिज बिस्मार तिन देखा जिताब दिखाए नानक तिजन सो जी पाई सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत करण माही आकाश ब्याल सर्व लोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा जैसा क्रम पौन पानी बैठन धर्माहे चार कुंत तय दिशे समाहे तिथे पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण स्मृत मारे सची अर सूर नक्षत्र माये करु बाणी प्रभ के सबको बोला आप डोल ना कम डोल सर्व कला कर खेला खेल मोल ना पाई गुणा अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं यु विसाथ संत जना का पेकृत ब्रह्म संत जना का हृदय सब ब्रह्म संत जना सुनै सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता जिस किए रहत साधु वचन साधु सब गहत जो जो होए सोई सुखमान करण क्रावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख चमोही आप सत गया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावे ता करीब विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनिक लाल खी न जाय तिस भावे तिसले मिलाय कावन निकट कुन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाय नानक तिजन आप जाय सरब भूत आप वरतारा सरब नैन आप पेकन हारा सगल समग्री जा कांतना आपन जसा पी सुना आपन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबका मन अलिप्त हो रहा है जो किच कहना सो आपे का है आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाय इसे हो सो ना ही बुरा पूरा कहो किने कित करा आप बुला कर तू तत्नी की आपे जान अपने जी की आप साच दारी सब साच और पोतापन संग्राच ताकि गत गित कहीं ना जाए दूसर होता सो जी पाए जिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक के जान जो जान तिस सदा सुख हुए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद शब्द जगत तराया जन आवन का यह सुहाव जन का संग चित आवे नाम आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सद

पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आस मित त्याग तरंग संत दिना की तूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर करो आर्तन के पल्ले भंडार नान गुरु पूरे नमस्कार के कुशल सहज आनंद साध संगत परमानंद नरक निवार उदारो जियो।

गोविंद अमृत रस पियो, ये चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग रेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक सार के वचन, अमलीक लाल ए रतन, सुन कमाओ तो हो तू तार, आप त्रैलोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाका मन लगा हरे रंग। जय जय शब्द ना हनुवा जय, सुन सुन आनंद करे प्रभुका जय। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नाद उतरे तिनके साथे। शरण जोग सुन सुन नी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पै सबरेन, अमृत नाम साधु संगलैन। सो प्रथम भय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसनागत। कर प्रसाद दया प्रभारी, नानक भी खेत हमारी। प्रभु की उस सतक्रो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुख मन सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। सर्विच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए स्थान, पौना होवे आवन जान। हर तन खाट चले दिन तोए, नानक जी सह प्राप्त होए। हेम शांत निध नाउ निध, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप जोग प्रध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबका मध सकल ते उदास। सुंदर चतुर तत्का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। एहे फल तिस जन कै मुख बने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ता कीगत होए। गुण गोविंद नाम सुन बाणी, सिमृत शास्त्र भेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत का मन विश्राम। कोट प्राद साध सुन मिटै, संत कृपा ते जमते छुटै। जाका मस्तक कर्म प्रभु पाए, साधु तरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुन लाए परीत, तिस जन आवै हर प्रभु चीत। जन्म मरण ताका दुख निवार, दुर्लभ दे तत्काल उतार। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माई समानी।

एको ओंकार त्रिवाहिगुरु जी की फते जाप श्री मुखवाक पाशा जस्मी छप छंद तो प्रसाद चक्र चिन्ह अर्परण जातर पात नहंजे रूप रंग अर रेख पेक गौ कह नाशक कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश तोज कही जय कोट इंद्र इंद्राम साहे शान गणी जय त्रिभुवन त्रिभुवन महिप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कह तौ सर्वनाम कथ कवन कारम नाम वर्णत सुमत वजन प्रिया छंद नमस्तुं अकाले नमस्तुं कृपाले नमस्तुं अरूपे नमस्तुं अनूपे नमस्तुं अपेखे नमस्तुं अलेखे नमस्तुं अकाय नमस्तुं अजाय नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं अनामे नमस्तुं अटामे नमस्तुं अकर्मं नमस्तुं धर्मं नमस्तुं अनामं नमस्तुं अदामं नमस्तुं अजीते नमस्तुं अभीते नमस्तुं अबाहे नमस्तुं अडाहे नमस्तुं अनिले नमस्तुं अनादे नमस्तुं अछेदे नमस्तुं अगादे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं उदारे नमस्तुं अपारे नमस्तुं सेका नमस्तुं अनेकार नमस्तुं अमूते नमस्तुं अजूपे नमस्तुं निष्कर्मे नमस्तुं निर्परमे नमस्तुं निर्देशे नमस्तुं निर्पेशे नमस्तुं निर्नामे नमस्तुं निर्कामे नमस्तुं निर्दाते नमस्तुं निर्गाते नमस्तुं निर्दूते नमस्तुं अभूते नमस्तुं आलोके नमस्तुं अशोके नमस्तुं निर्तापे नमस्तुं अतापे नमस्तुं त्रिमाने नमस्तुं जिनाने नमस्तुं अगाहे नमस्तुं अबाहे नमस्तुं त्रिभुवने नमस्तुं सर्गे नमस्तुं प्रभुगे नमस्तुं सुजोगे नमस्तुं अरंगे नमस्तुं अपंगे नमस्तुं गर्गमे नमस्तुं अतरमे नमस्तुं जराश्रे नमस्तुं जराश्रे नमस्तुं अजाते नमस्तुं अपाते नमस्तुं अमजवे नमस्तुं अतजवे आदेशं आदेशे नमस्तुं अभेशे नमस्तुं निर्धामे नमस्तुं निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व रूपे नमो सर्व कापे नमो सर्व तापे नमो सर्व काले नमो सर्व काले नमस्ताच्युदेवाय नमस्तापेवाय नमस्तनमे नमस्तं सुमनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व गौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तु दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्व तन्यं नमो सर्वतंदे नमो सत बंदे नमस्त निर्साके नमस्त निर्वाके नमस्त रही मे नस्तम नमस्त करी मे नमस्त अलंते नमस्त महंते नमस्त चुराग नमस्त सुहागे नमो सर्व शोक नमो सर्व पोक नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो योग योगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चातुरी शब्द तो प्रकार आरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदेह है अभेह है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिपर का स्वर्ग है अनेर है नाद है अजय है अजाद है अधर्म है अपरन है भूत है ब्रह्म है अगंज है अपंज है जूझ है अजंज है अमीक है रफीक है बुंद है अबंद है निर्भूज है सूझ है काल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलिका नृत्रिका निर्लंब है अकंभ है अगम है अजम्भ है भूत है जूत है अलोक है अशोक है क्रम है ब्रह्म है अजीत है बीत है अबा है अगा है अमान है त्रिम निदान अनेक है प्रियक है भुजंग प्रिया छंद नमो सर्वमाने समस्त निदान नमो देव देवे प्रिया पेवे नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौणे नमो सर्व गौणे अनंगी अनाथे निर्भर निस्संगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो ताने ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समर्थ स्वरूपे प्रभंगी प्रमाते समर्थ विभूते कलंक बिनाले कलंकी स्वरूपे नमो राज राजस्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजस्वरम परम विदे नमो शस्त्रपाणि नमो शस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगेश्वरम परम युगते नमो नित नारायण कुल कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र यंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा तुदान सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समर्थ निवासी
പാരം പരം പരമേശ്വരം പ്രോജ്വാലം സദാ സർവദാ സജ്ജതാതാധ്യാലം അഛേദി അഭേദി അനാമം കാമം സമർത്തോ പ്രാജി സമർത്തസുതാമം തേ രാജോർച്ചാത്രീ ചന്ദ് ജലേഹ ചലേഹ അഭേദഹ അഭേഹ പ്രഭുഹ അജുഹ അദേശ അഭേശ ഭുജൻ പ്രിയാ ചന്ദ് അഗാധേ അബാധേ അനന്ദി അനുപേ അഗാധേ അബാധേ അനന്ദി സ്വരൂപേ നമോ സർവമാനേ സമസ്തിനി ദാനേ നമസ്തു നിർദാതേ നമസ്തു പ്രമാതേ നമസ്തു അഗംജേ നമസ്തു അപഞ്ജേ നമസ്തു അകാലേ നമസ്തു അപാലേ നമോ സർവദേശേ നമോ സർവഭേശേ നമോ രാജരാജേ നമോ സാധു സാധേ നമോ സാഹസായ നമോ മാമാഹേ നമോ ഗീത ഗീതേ നമോ പ്രീതി പ്രീതേ നമോ രോഗ രോഗേ നമോ ശോക ശോകേ നമോ സർവരോഗേ നമോ സർവഭോഗേ നമോ സർവജീതം നമോ സർവഭീതം നമോ സർവജ്ഞാനം നമോ പ്രംതാനം നമോ സർവമന്ത്രം നമോ സർവജന്ത്രം നമോ സർവദൃശ്യം നമോ സർവകീർത്തനം നമോ സർവരംഗേ ത്രിഭംഗേ ആനംഗേ നമോ ജീവ ജീവൻ നമോ ബീജ ബീജേ അഖിജേ പിജേ പ്രസംഗ സമസ്തം പരിശിജേ കൃപാലം സ്വരൂപേ കുകർമ്മം പ്രണാശി സദാ സർവദാ ചിരം നിവാസി ചാർപട ഛന്ദ് തോ പ്രസാദ് അമൃത കർമ്മേ അമൃത തർമ്മേ അഖൽ ജോഗേ അച്ചൽ ഭോഗേ അച്ചൽ രാജേ അട്ടൽ സാജേ അഖല ധർമ്മം അലക് കർമ്മം സർവം ദാതാ സർവം ഗാതാ സർവം ഭാനു സർവം ഭാനു സർവം പ്രാണു സർവം ത്രാണു സർവം ഭുക്താ സർവം ജുക്താ സർവം ദേവം സർവം ദേവം സർവം കാലേ സർവം കാലേ റുവാൽ ശബ്ദതോ പ്രസാരു ആദ്രൂപ അനാദ്മൂർത്ത് അജോൽ പ്രകപാരു സർവമാൻ ത്രിമാൻ ദേവ അപേവ് ആദുദാരു സർവപാലക് സർവകാലക് സർവകോപനകാരു യത്ര തത്ര ദിവ്യരാജേ അദൂത രൂപരസാലു നാം താം അജാത ജാഗ രൂപ രംഗനാരേ ആദ പ്രകോദാര മൂർത്ത് അജോൻ ആരസീകൾ ദേശോർണാഭീഷ് ജാഗ രൂപരേഖനാരാഗ് യത്ര തത്ര ദിശാ വിഷാ ഹോയ ഫലിയോ അനുരാഗ് നാം കാം വിഹീന പേക തദാം ജായ സർവമാൻ സർവത്രമാന സദൈവമാന താഹി ഏക മൂർത്ത് അനേക തർത്തന കീന രൂപനേക ഖേര ഖേര ഖേര ഖേര അനന്ത കോ ഫിരേക ദേവ പേവ ന ജാനഹി ജയ ബേജ ഉർക ദേവ രൂപ രംഗ ന ജാത പാത സോ ജാനഹി കേ ദേവ താത മാത ന ജാത ജാകർ ജനം മരണ വിഹീന ചക്ര ബക്ര ഫിര ചിത്ര ചക്രമാൻ ഹി പ്രതീന ലോക ചോദാ കെ വിഖയ ജഗ ജാപ ഹി ജേ ജാപ ആദ ദേവ അനാദ മൂർത്ത് സ്ഥാപ്യോ തവേ ജി താപ പരം രൂപ നീത മൂർത്ത് പൂരൻ പൃക്കാര സർവ വിശ്വരചിയോ സുയംഗോ വടൻ വഞ്ജനഹാര കാലഹീന അകാല മൂർത്ത് കാലഹീന കലാ സംയുക്ത അകാല പൃക് അദേശ തരം ദാം സോ ബ്രഹ്മരാത ഭൂതല കപീശ അംഗ രാഗ നരം ജാക ജാത് പാതനാം ഗർഭ കഞ്ജം ദുഷ്ട പഞ്ജനം കൃതദായ കാമ ആപ് രൂപ അമേക അനുഭൂതേക രൂപ ഏക പ്രകൂത ഗർഭ കഞ്ജം സർവപഞ്ജന ആദ്രുപൂത അംഗഹീന അപങ്കനാഥം ഏക പ്രകാര സർവലായ സർവകായക സർവകോ പ്രതിപാര സർവഗന്താ സർവഹന്ത സർവതേ അനപേക സർവശാസ്ത്ര ജാനഹി ജയ രൂപരംഗരേക പരം വേദ പുരാണ ജാക നേത് പാകത് നീത് കോട്ട സ്മൃത് പുരാണ ശാസ്ത്ര ആവഹി വഹോചിത് മധുപാര ഛന്ദിതോ പ്രസാര ഗുൺഗൺ ഉദാര മഹിമാ പാര ആസന അപംഗ അപുസ്മാനംഗ അനുഭവ പ്രകാശ നിശീസനാശു ആജാന ബാഹു സാം സാഹു രാജാം രാജപാനാനുവാന ദേവാം ദേ ഉപമാ മഹാന ഇതനാ ഇന്ദ്രാനന്ദ്ര ബാലാനുബാലു രംകാലു കാലാനുകാലു അനുഭൂത് അംഗാഭാവങ്ങു രത്മിത അപാരു മുൻഗണുദാരു മുൻഗൺ പ്രണാം നൃപേന്ദ്രകാമു അതുദുൽപർജന്മിതി കടഖണ്ഡു ആലശേഖരമാതൃചേതനം സർവാപണ്ണാട്ട അനുബാട്ട ചാത്രി ചന്ദ് തോപ്രകാരു ഗോവിന്ദേ മുകന്ദേ ഉദാരേ അപാരേ അറിയം കറിയം നിനാമേ അകാമേ ഭുജം പ്രിയാ ചന്ദ് ചതുർചക്രകർത്ത ചതുർചക്രഹർത്ത ചതുർചക്രതാനി ചതുർചക്രജാനി ചതുർചക്രവർത്തി ചതുർചക്രവർത്തി ചതുർചക്രപാലേ ചതുർചക്രകാലേ ചതുർചക്രപാശേ ചതുർചക്രവാസേ ചതുർചക്രമാന ചതുർചക്രദാനി ചാത്രി ഛന്ദ് നാശത്രയ നാമിത്രയ നാപരമം നാപിത്രയ നാകർമ്മം നാകായ അജനമം അജായ നാചിത്രയ നാമിത്രയ പരേഹ പവിത്രയ പ്രതിഷ്ഠയ ദൃഷ്ടായ അദൃശ്യ കൃഷ്ടായ ഭഗവതി ചന്ദ് തൗ പ്രസാദ കഥത്തെ ആചിജ്യ ക്യാ വിജ്വേശ
ਕਿ ਆਗੰਜ ਕਰਮਾ ਕਿ ਆ ਪੰਜ ਪਰਮਾ ਕਿ ਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨਾ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੋਕ ਬਰਨਾ ਕਿ ਸਰਵਾ ਅਭਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਭੂ ਅਨੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰਨ ਬੀਹਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਰੇ ਹਿਮਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਪਾਕ ਵਿਆਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਰਗਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅਪੁੰਡ ਗੁਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਪੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਆ ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਕੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਕੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਸ ਜੀਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮਾ ਕਿ ਪਰਮੰ ਪਹੀਮਾ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਮਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਦਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲੀ ਕਤਮਦਾਮ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਥ ਹੈ ਬਿਲੰਦੁਨ ਮਕਾਲ ਜਿਮਨ ਜਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੁਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਹਰੀਪੁਲ ਅਜੀਮਾ ਰਜਾ ਕੇ ਅਕੀਨ ਅਨੇਕ ਤਿਰੰਗਾ ਭੇਜ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਤੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਕਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਹ ਸੁਯੁਕਤ ਸੁਦਾਹ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਸਦੈਵ ਅਲੇ ਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਵੰਗ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਗਨ ਜੇ ਗਾ ਦੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਭਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਕਤ ਸਰੂਪ ਅਚੀ ਜਿਹਾ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲ ਸੇ ਪ੍ਰਤੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਕ ਹੈ ਅਲੇਕ ਹੈ ਅਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਗ੍ਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜ ਅਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਦੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ ਅਭਕਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਕ ਹੈ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਲੇਕ ਹੈ ਅਪੇਕ ਹੈ ਅਡਾ ਹੈ ਅਕਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੇਰ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਚਰਪਟ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਤਾਰ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਾਤਾ ਸਰਬੰ ਜਾਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਕਰਮ ਸਰਬੰ ਧਰਮ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਚਾਵ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਤਾਰ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੇਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਤੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਨਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸੁਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸ਼ਾਕੰ ਸਰੀਰੰ ਤੁਮੀ ਕਹਿਣ ਸਦੇਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜੋਹੁਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਤੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਲ ਤਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਗ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਰਾਗ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਕਿ ਰੋਜੇ ਦੀਹਿੰਦ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਂਦ ਕਰੀਮਲ ਕਰਮਾਲ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮਾਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਕਿ ਰਾਜ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਪੁਲ ਚਿਕਨ ਹੈ ਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੁੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸੁਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਭਵਨ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਵੈਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਲਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਾਰਮ ਪਰਮ ਈਸਾ ਸਮੁੰਦ ਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਆਦੇਸੁਲ ਅਲੇਕ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਭੇਕ ਹੈ ਜਮੀਨ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀ ਕੁਲੀਮਾ ਹੈ ਕਮੇ ਕਰੀਮਨ ਕੁਮਾਲ ਹੈ ਕਰੀਮਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਤਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਮਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਮਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਤੋ ਪ੍ਰਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਰੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਧੁਬਾਰ ਸੰਧ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਣ ਉਦਾਮ ਹਰ ਪਰ ਅਗੰਜ ਹਰਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨਮਨ ਤਲਾਮ ਹਰਨਰ ਅਖੰਡ ਵਰਣਨ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲਥਲ ਮੁਦਾਮ
அஞ்சத் அங்கு ஆசன பங்கு உப்மா அபாரகத்தின் துதார் ஜல்தலமான் அமண்டு திசுபண்டு ஜல்தல மகந்து திசுபியந்து அனுபோ அநாஷ் திருத்த தர்துராஜ் ஆஜான பாஹு ஏகசராஹு ஓங்கார் ஆது கத்யராரு கல் கண்டு கால் குரு பிரகால் கர் கர் பிரணாம் சித்திரணாம் அஞ்ச ஜிகாத் அஜித்நாபாத் அஞ்சன் ஜிகாத் அந்தரஞ்சுபாத் அன்டுட் பண்டார் அன்டட்டபார் ஆடீட் தரம் அடுட்டீட் கரம் அன்பரன் அனந்து தாத்தா மகந்து அல்போ அர்போல் மலா சந்து தோ பிரசாரு கருணால அர்கால கல்கண்டன ஹ மேமண்டன ஹ ஜெகதீஸ்வர ஹ பரமேஸ்வர ஹ கல்காரன் ஹ சர்வபார ஹ கீந்திரித் கேதரன் ஹ ஜப்கே கரண ஹ மன மான ஹ ஜப் ஜான ஹ சர்வம் பரம சர்வம் காரம் ஹ சர்வம் உபாச சர்வநாச ஹ குருணாகர ஹ சுமர ஹ சர்வேஸ்வர ஹ ஜெகதீஸ்வர ஹ பிரமன் ச கல்கண்டன ஹ பரதே பர ஹ குருணாகர ஹ அஜபா ஜப தபா தப ஹ அகிருதா கிருத அமிர்த அமிர்த ஹ அமிர்தா மிருத கருணாகிருத்த அகிருதா கிருத அணிந்திருத்த அம்தேஸ்வர ஹ பரமேஸ்வர ஹ அகிருதா கிருத அமிருத அமிருத ஹ அஜபா கிருத அமிருத அமிருத நிரநாயக ஹ கல்காயக ஹ விஸ்வம்பர ஹ கருணால ஹ நிருபநாயக ஹ சர்வகா சர்வபாயக ஹ பாவ பஞ்சன ஆர்கஞ்சன ஹ ரிப்தாபன ஹ ஜபஜாபன ஹ அகலங்கிருத்த சர்வாகிருத்த ஹ கர்த்தா கர்த்தா ஹர ஹ பரமாத்ம ஹ சர்வ ஆத்ம ஹ ஆத்ம பச ஜஸ் கே ஜா சம்ப ஜிம் புரியா சந்த நமோ சூரிய சூரியே நமோ சந்திர சந்திரே நமோ ராஜி ராஜி நமோ இந்திர இந்திரே நமோ அந்தகாரே நமோ தேஜ் தேஜி நமோ பிருந்த பிருந்தே நமோ பீஜ பீஜே நமோ ராஜ சந்தாம் சந்தாந்த ரூபே நமோ பிரம் தத்தங் அத்தத்தங் ஸ்வரூபே நமோ ஜோக் ஜோகே நமோ ஜான ஜானே நமோ மந்திர மந்திரே நமோ தியான தியானே நமோ ஜுதி ஜுதே நமோ ஜான ஜானே நமோ போஜ போஜே நமோ பான பாரே நமோ கலகர்த்தா நமோ சாந்த ரூபே நமோ இந்திர இந்திரே நாதம் விபூதே கலங்கார ரூபே அலங்கார அலங்கே நமோ ஆசாசே நமோ பாங்கு பங்கே அபங்கி சரூபே அனங்கிய நாமே திருபங்கி திரிகாலே அனங்கிய காமே ஏக ஸ்ரீசந்த அஜ அல அப அப அபு அஜு அநாச காசு அகஞ்ச பஞ்சலக பக்கு அகால தியால் அரேக பேக அநாம காம காஹ டா அநாத்தே பிரமாத்திய ஜோனி அமோனி நாராகே நாரங்கே நாரூபே நாரேகே அகர்மங் அபர்மங் அகஞ்சி அலேகே புஜங் பிரியாச்சந்த நமஸ்துல் பிரணாமே சமஸ்துல் பிரணாசி அகுஞ்ச நராமே சமஸ்து நிவாசே நின் காமங் விபூதே சமஸ்துல் சுரூபே குகர்மங் பிரணாசி சுத்திரமங் விபூதே சதா சத்தியானந்த சத்திரங் பிரணாசி கரிமன் குனிந்தா சமஸ்துல் நிவாசி அஜாய விபூதே விதாவிகனிமே ஹரியங் கரியங் கரிமன் ரஹிமே சத்ர சக்கரவர்த்தி சத்ர சக்கர பூதே சுயங் போத் பங்க சர்வதா சர்வஜூதே துகாலங் பிரணாசி தயாலங் சரூபே ததா அங்க சங்கே அபங்க பிபூதே துகாலங் பிரணாசி தயாலங் சரூபே ததா அங்க சங்கே அபங்கம் விபூதே ஏகோ வங்கார் சத்குரு பிரசாத் பாசாய தஸ்மிதோ பிரசாத் சுவையே சராவக சுத் சமூசிதானிகே தேக் பிரியோ கர் யோக ஜதிகே சூர் சுராதம் சுத் சுதாதி சந்த சமூ அரேக மதிகே சாரே ஹி தேச கு தேக் ரஹோ மத் கோ ந தேகித் பிராண பதிகே ஸ்ரீ பகவான் கி பாய் கிருபா ஹுந்தே ஏக ரதீவன் ஏக ரதிகே மாதே மதங் ஜரே ஜர்சங் அனுபூதங் சுரங்க சுவாரே கோட் சுரங்க குரங் சே கூதத் பவன் கே கவுன் கோ ஜாத் நிவாரே பாரே புஜான் கே பூப் பலீபித் நியாவத் சீசனா ஜாத் விசாரே ஏத்தே பய தோ கஹா பய பூபத் அந்த கோ நாங்கே ஹி பாய் பதாரே ஜீத் பிர சப்தே சித்திசான் கோ பாஜித் டோல் மிருதங்காரே குஞ்சத் கூடு கஜான் கே சுந்தர் இன்சத் ஹி ஹை ராஜ் ஹஜாரே பூட் பவிக் பவான் கே பூபத் கவுன் கணனி ஜாத் விசாரே ஸ்ரீபத் ஸ்ரீ பகவான் பஜேவின் அந்த கோ அந்த கே தாம் சிதாரே தீரத் நாம் தயா தந்தான் சுசம்யம் அநேக அநேக விசேக வேத புராண் கத்தேவ் குரான் ஜமீன் ஜமான் சுபான் கே பேக பவுன் ஆஹார் ஜதி ஜத் தார் சப சுபிச்சார் ஹஜார் கதேக ஸ்ரீ பகவான் பஜேவின் கி பூபத் ஸ்ரீ பகவான் பதேவின் பூபத் ஏக ரத்தீவன் ஏக நாளேக சுத் சிபா
ਦੁਰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਧ ਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਲੈਂਗੀ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਪਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਵਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋ ਨਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤ੍ਰਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਂ ਨਿਦਾਨ ਚੱਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਚਾਰ ਹੰਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛੀਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੀ ਮਾਲ ਮਲਈਆ ਗਾਢੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਚਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨੰ ਦੇਵ ਪਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਓਦ ਭਵੀ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜੁਤੇ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲਹੀ ਪਲਮੈ ਸਭ ਤਾਪ ਤਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਣ ਜੈਤ ਤੁਨੂ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬੋ ਪੂੰਜ ਖਪਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪਰਤਨ ਪ੍ਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਆਉ ਲੋਕ ਜਪਾਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦ ਜੋ ਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਕਜਾਦ ਗਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਪਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ੰਤ ਜੀ ਪਤ ਅੰਤ ਪਸੇ ਜਮ ਫਾਜ ਪਰੈਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰ ਹੈ ਪੱਗ ਤੇ ਨਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਹੀ ਧਰਾਂਗੇ ਕਾਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹੋ ਭਗਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਯੋ ਨਾਥ ਪ੍ਰਿਯੋ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁਦਰਨ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਯੋ ਬਾਸ ਕਿਉ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਠ ਬਿਤਾਯੋ ਸਾਥ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਯੋ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਦਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਯੋ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਚਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ਕੋ ਭੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਨਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਦਾਯੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਯੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਯੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥੇ ਰੱਖਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਵਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈ ਤੁਮ ਭਾਓ ਆਪ ਪਾਦੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਓ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭੈਰਨ ਕੁਆ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈਂ ਛਾੜ ਕੇ ਔਰ ਨ ਧਿਆਓ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੁਖਮ ਤੇ ਪਾਓ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤੁਨ ਤੁਨ ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪਾਤਮ ਦੇਵ ਵਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸਨੀ ਵਰੀਏ ਹੂੰ ਜੋ ਸਦਾ ਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸਿਰੇ ਸੂਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲੇ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇਨ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਅੰਤ ਆਤਮੋ ਪ੍ਰੀ ਚਤੁਰਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿਆ ਤਮਾਸਾ ਜੋਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਓ ਬੇਦਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀਓ

हर गांव मंगल ने सखे सो दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया कह नानक हे शरीर प्रवाण होआ जिन सतगुरु स्यों चितला।

रस समाणी सच अलख विडाणी ताकी गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच है सुन नैनो पठाए। हर जो गुफा अंदर रख कहे वाजा पौण बजाया बजाया वाजा पौण नाम द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पौण बजाया। ए साचा सोहेला सच है कर गावे गावे तो सोहेला कर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जात पावे गुरमुख जिना बुझावे। ए सच सबना का खसम है जिस बख्श से सो जन पावे। कह नानक सच सोहेला सच्चे कर गावे आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे।

ताहिव जियो अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार तन सोवेला जित दर्शन करना हों बलहारी सतगुरु चरना तन सोवेला जित दर्शन करना हों बलहारी सतगुरु चरना जी के दाते

भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी रक्त बिंद कर निम्मिया अगन उदर मजार उर्द मुख कुचील बिकल नरक कोर गुबार हर सिमरत।

अकिर्त कणा हर विसरिया, जोनी परमेत श्लोक कोट दान इसनान, अनिक शोधन पवित्रत है, उचरंत नानक हर हर रसना।

तिस की धूड़ मन उदरै। प्रभ हुए सुप्रसन्ना सलोक अनिक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतक

चितवंत चरण कमलं सास सास अराध नह नह बिसरंत नाम अचुत नानक आस पूरन परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहे

पतत पुनीत गोविंद है, सर्व दुख निवारण है, शरण सूर भगवान है, जपंत नानक हर हर हर।

आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिप्त न माया पाहे बलन।

गुरदयाल समरथ गुर, गुरु नानक पतत उदाहरण है। भौजल बिकम सगाहु गुर बोहित है तारियम, नानक पूर करम सतगुर चरणी लगे आ पौड़ी।

तिन प्रभ आप बुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक महत न एहो मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जो हन जायो। चरण कमल स्यों पाऊ न कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को तावह बहुपाती, यो

जन नानक हर रस पाया, टोडी महला पंजवां, कृपा निध बसोर तै हर नीत, तैसी बुद्ध करहु परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापत ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कि तुहारो पावो, जो तू देह तही एह तृप्तै, आन कतहु तावो, साध ही निकट।

साध संग भजन कर स्वामी, ढाकन कौ इक हरे रहाओ, अनिक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आराधे, खोटे

नानक अनद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो नितां प्रति सतगुरां दी अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो, जो समुची मानवता दे समुचे संसार दे जीवां दे भले वास्ते रखे गए हन। गुरु कृपा करे सतगुरु जी सभना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजन, बाणी दा फल प्रदान करन, रहमतां करन, घरां विच सुख वरतावन। गुरु कृपा सदका बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीआं, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शियोग ने भुल्लां ना चितार दे। फतेह गुजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलेव, तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है, नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ए लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जदों एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस, गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान दी लाज रखी, भावें अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आखदे ने जिहदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

0: प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़दियां होईयां भुलां दी खिमा करना जी। अज जिसने किता धन धन श्री गुरु गोबिंद महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ी मनाई जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समां सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हमे का जगत में आयो, परमवेद को दे पठायो, हमे का जगत में आए, धर्मेत को दे पठाए, जहां तहां तुम धर्म निथारो, दुष्ट दोखियन फकर पिछारो,

बेनती कर दें आप जी के चरणों च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हैं, सरबंस दानी हैं, खालसा पंथ के सृजनहार हैं, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना तो, बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवें। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू होई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच, दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया, उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ये उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।

अशोक संमिश्र की मारते हुए पिल्लू की छोड़ी वक्त केवल भगत कीर्तन संग्रह